0: अगले सुंदर मुद्रा रेडियो साइलेंट 89.1 में कहा
1: साहिनो समय सूचक अहिले बिहानको 5 बज्यो।

0: रेडियो साइनो 89.8 MHz तपाईं हाम्रो अटुट साइनो।
1: सब्सक्राइब नाउ एन्ड प्रेस द बेल आइकन, नेभर मिस एन अपडेट फ्रम टिप्स अफिसियल।

0: मेरे को पैसे
1: क्या घर या घर भी आ गया
0: बावलट
2: कौन
0: पता नहीं दारू पी के गाड़ी चला रहा था मरते मरते बची हूँ मैं
2: फालतू साला मुफ्त में सुन रहा है मत देख उसको चल छोड़ मैनेजर देख रहा है चल चल चल चल चल

रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन एसी को कंप्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता पाई पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी लाइफ गुड